0: भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थी। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Vansa Vidyalaya.

Ender. नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी, और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। जिंदगी में असली सुकून और आनंद बड़ी बड़ी सफलताओं से ज्यादा रोजाना मिलने वाले छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातों में क्या रखा है, चलो आज छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं। भाग दौड़ भरी इस मसरूफ जिंदगी में सुकून के कुछ हसीन लम्हे बुनते हैं। सुबह की वो चाय और चाय की वो पहली चुस्की और खिड़की से आती धूप की वो मुस्कान, पौधों पर महकती हुई नई नई कलियां जैसे कह रही हूँ थम जा ए इंसान। माँ के हाथों के खाने का वो अनोखा स्वाद और बरसों पुराने किसी मित्र की याद, रास्ते में चलते हुए गीत सुनना या कहीं सुरीला गीत सुनना और अकेले बैठकर नए नए सपने बुनना, बड़ी खुशियों के इंतजार में हर पल को यूं न गंवाना। ये छोटी छोटी राहें ही मंजिल तक ले जाएंगी, बस हर एक छोटे पल को दिल से मुस्कुरा कर जीना। जी हाँ, यही तो जिंदगी है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म का ये गीत सुना जी हाँ। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अगर हम यही सोच लें कि हर पल में खुशियां ढूंढें तो क्या नहीं मिल सकता। और हमारे घर की जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं का ये खास कार्यक्रम है घर आंगन, तो हम महिलाओं से तो बात जरूर करेंगे, महिलाओं के लिए ही है और महिलाएं तो ढूंढती भी हैं। सबसे ये अनुरोध है कि हर पल में खुशियां ढूंढिए, अगर आप खुशियां ढूंढेंगे तो खुशियां ही मिलेंगी, और अगर तनाव का माहौल में भी खुशियां अगर आपने ढूंढ ली तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए आकाशवाणी बना रहा है अपने 90 वर्षों का सफर, ध्वनि तरंगों की ताल पर चलता है ये सफर। आकाशवाणी एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है। आकाशवाणी का साधारण सा दिल्ली स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले, इतिहास को एक माइक मिला, निशांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा विभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों को जोड़ता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 2400 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, ये है आकाशवाणी। अब आकाशवाणी पे रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग ऐतिहासिक रूप से हुई, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। 1980 में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र ने रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग आरंभ की। ये परियोजना भोपाल केंद्र के तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई। गोस्वामी तुलसीदास के इस महान महाकाव्य के सातों कांडों को रिकॉर्ड करने के लिए 14 लोक कलाकारों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें ब्रज भूषण बसु, सुरेखा केलकर, जयश्री थत्ते और रामकिशन चंदेसरी जैसे नाम शामिल थे। रिकॉर्डिंग की यह लंबी प्रक्रिया 1980 से 1992 तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 62 घंटे से अधिक समय का एक विशाल और सुरीला संकलन तैयार हुआ। यहाँ रामचरितमानस अपनी प्रामाणिकता और मधुर प्रस्तुति के कारण ये संस्करण हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।

सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

चल रहा है घर आंगन और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। अब हम अपनी महिलाओं से इतनी सारी बातें हर बार करते हैं, रोज करते हैं, आके बताते हैं उनको। अब देखिए मिशन लाइफ के 7 प्रमुख विषय हैं, कुछ दैनिक आते हैं और हमारी महिलाएं इन बातों को समझ भी रही हैं और बहुत सारी महिलाओं ने तो हमारी जो बातों को है वो सीरियसली भी लिया है। अब आज जो मैं बताने वाली हूँ ना उसे बिल्कुल सीरियस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर इस पर अमल करते हैं तो। मिशन लाइफ के ना 7 थीम्स होते हैं जो दैनिक आदतों में हमें शामिल करने चाहिए। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2026 में ठोस कचरा प्रबंधन नियम है, जो 7 आदतें हैं उसमें से एक आदत है कि जो कचरा आपके घर से निकलता है वो रिसाइकिल होना चाहिए, जो ई वेस्ट कचरा है वो आप घटाएं अपना। तो इसके लिए है कि भोजन को बर्बाद होने से बचाएं, शादी विवाह समारोह में जो आप जाते हैं बर्तनों डिस्पोजेबल बर्तन जो होते हैं उसकी जगह पारंपरिक और दोबारा इस्तेमाल वाले बर्तनों का उपयोग करें। घर में भी ऐसा ही करें, ज्यादा मेहमान आ जाएं तो ज्यादा प्लेट्स हो जाएं मांजनी पड़ेंगी कोई बात नहीं, लेकिन आप डिस्पोजेबल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे कचरा बहुत ज्यादा होता है। अपने मोबाइल और लैपटॉप को बार बार बदलने की बजाय रिपेयर कराकर उसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। इसे ई जो वेस्ट है ई कचरा है वो घटाया जा सकता है। अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स को केवल अधिकृत ई कचरा रिसाइकल्स को ही सौंपना चाहिए, यानी कि आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आप ऐसे ही जाने दें उसे, या कोई मोबाइल है पुराना तो वो आपको एक अधिकृत ई कचरा वाले को ही देना है। अब देखिए स्रोत पर ही कचरे के 4 स्ट्रीम का जो है अलग अलग किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कूड़े का। अब ज्यादातर आप लोगों ने जगह जगह दीवारों पर भी लिखा है गीला कचरा, सूखा कचरा, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन। बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि बहुत जरूरी चीजें हैं कि गीला कचरा कहाँ जाना चाहिए, सूखा कचरा कहाँ जाना चाहिए। गीला कचरा यानी जो आपका वेट वेस्ट है, यानी रसोई का कचरा, बचा हुआ भोजन, फलों और सब्जियों के छिलके, इन्हें खाद या बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और नए नियमों के तहत अब हर नागरिक को, हर गृहस्थ के लिए कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर कूड़ा देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। इसलिए अपने घर में ही इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है कि हम सूखा कचरा अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें। जो ड्राई वेस्ट है उसमें प्लास्टिक, कागज, गत्ता, धातु, कांच और रबड़, इसे रिसाइकलिंग के लिए अलग से भेजा जाता है। अब सिंगल यूज यानी एक बार यूज होने वाले प्लास्टिक को बिल्कुल ना कह दे ताकि कचरा कम हो। और ई वेस्ट भी घटाना बहुत जरूरी है। ये कदम जो होते हैं ना पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे तरफ से उठाए गए छोटे छोटे कदम है ना वो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ताकि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं हम अगर छोटे छोटे बदलाव करें नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। कहीं भी जाकर डिस्पोजेबल में आप चाय पीते हैं तो ना पीजिए, अपना स्टील का एक ग्लास अपने साथ रखिए, या जैसे स्टील का ग्लास तो वही रख सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं वो अपने साथ रखिए, या फिर वो कूलर वाली चाय पीजिए। अब सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलें तो कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर जाएं। प्लास्टिक की थैलियां, स्टोर, डिस्पोजल का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें, गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, जरूरत के मुताबिक ही खरीदें। ज्यादा चीजें खरीदने से कबाड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब ई कचरा घटाने हैं, गैजेट्स को रिपेयर कराएं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक

साइकिल करें, और काम के जो उपकरण है जो ठीक ठाक है उन्हें दान भी किया जा सकता है। थोड़ी बहुत चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं यूज करें, किसी को दे दीजिए, किसी के काम ही आएंगी, क्यों, है ना? ठीक बात।

शगुन फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अब चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तमन मास या मल मास चल रहा है ना, 16 मई से शुरू हो चुका है। अब देखिए कुछ लोगों को पता ही नहीं है, अब बहुत सारी लोग ये सोच रहे हैं। आज मैं मेट्रो में आ रही थी तो कुछ लड़कियां भी यही पूछ रही थी, यार ये पुरुषोत्तमन मास होता क्या है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जो कहते हैं, क्योंकि इतना सारा अब सोशल मीडिया है, रील्स हैं, तो लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई अधिक मास चल रहा है। अब अधिक मास की सबको ये रहता है कि जिज्ञासा भी है कि है क्या, जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं, अधिक मास हिंदू कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना है जो हर 3 साल में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है। सरल शब्दों में जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी फरवरी में 29 दिन आते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक पूरा अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जो इस बार ये ज्येष्ठ का महीना है, यानी जेठ का महीना है जो 2 महीने का है। अब क्यों आता है, हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की चाल पर आधारित होता है। सौर वर्ष सूर्य का एक चक्र लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है, और चंद्रमा का जो वर्ष है वो एक चक्र लगभग 354 दिन का होता है। अब इन दोनों के बीच का हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ ही जाता है। अगर इस अंतर को ठीक ना किया जाए तो हमारे सभी त्योहार धीरे धीरे अपने मौसम से आगे पीछे हो जाएंगे। इस अंतर को पाटने के लिए हर 32 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, इसी को अधिक मास कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर महीने का कोई ना कोई स्वामी देवता होता है, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था, कोई देवता नहीं था, तो इसे अपवित्र मान

मलमास कहा गया। दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास गया। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना उत्तम नाम पुरुषोत्तम दिया। अब कहा कि मैं इस महीने का स्वामी हूँ। भगवान विष्णु का नाम मिलने के कारण ही यह महीना आध्यात्मिक रूप से सबसे पवित्र और फलदायी बन गया। अब फलदायी कैसे? यह महीना पूरी तरह से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है इस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। इस महीने में केवल आध्यात्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ, भक्ति, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन या नया बिजनेस शुरू करने के लिए मांगलिक कार्य यानी इस महीने में नहीं होते हैं। लेकिन ये महीना सिर्फ पूजा पाठ के लिए है।

दिल में ये गीत आप सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज में। हम गोल पे चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हम आज बात करेंगे हाथ के बने खिलौनों की। अब देखिए, हम इतनी वातावरण को संभालने की बातें कर रहे हैं, आपसे जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनवायरमेंट का आप ध्यान रखिए, तो खिलौने जो हैं वो क्यों प्लास्टिक के या किसी और मटेरियल के लेने हैं। हाथ से बने खिलौने केवल बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं होते बल्कि हमारी कला, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी होते हैं। भारत में लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, बांस और ऊन के बने खिलौनों की परंपरा बहुत पुरानी रही है। आज के समय में हैंडमेड टॉय बिजनेस भी एक अच्छा रोजगार और स्वरोजगार का माध्यम बनता जा रहा है। अब हाथ के बने खिलौनों के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने आते हैं। अब बचपन में हम लोगों ने तो लकड़ी के खिलौने बहुत देखे हैं, आजकल भी मिलते हैं, लेकिन लोग सिंथेटिक खिलौने बच्चों को देना पसंद करते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लकड़ी के खिलौने जैसे चंदपटना कर्नाटक के रंगीन खिलौने, मिट्टी के खिलौने जैसे गाँव और मेलों में लोकप्रिय होते हैं, कपड़े और ऊन के खिलौने जैसे टेडी बियर, गुड़िया, बांस और जूट के खिलौने जैसे जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, शैक्षणिक खिलौने होते हैं, बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने वाले पजल्स होते हैं। लकड़ी के हाथ से बने खिलौनों की विशेषताएं ये होती हैं कि वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, सुरक्षित होते हैं और प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं। भारतीय संस्कृति की झलक हर खिलौने में अलग और विशेष होती है। छोटे कारीगरों को रोजगार मिलता है, व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं। बाज लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक और सुरक्षित खिलौनों को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है, क्यों ये कचरा, इतना प्लास्टिक क्यों वेस्ट जनरेट करना है। इसी कारण हस्तनिर्मित खिलौनों की मांग भारत में और विदेशों में दोनों में बढ़ रही है। अब कैसे व्यापार शुरू किया जाए, आप ये भी तो सोचेंगे। घर से शुरुआत करें, कम पूंजी में छोटे स्तर पर काम शुरू

सोशल मीडिया, वेबसाइट और ई कॉमर्स के माध्यम से आप बिक्री की जा सकती है। आजकल तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। स्थानीय मेले या प्रदर्शनियां भी लगा सकते हैं। हस्तशिल्प मेलों में स्टॉल लगाकर भी ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं। स्कूल और गिफ्ट शॉप से संपर्क कर सकते हैं। शैक्षणिक और सजावटी खिलौनों की अच्छी मांग होती है। अब खिलौनों की गुणवत्ता अगर अच्छी हो, रंग और सामग्री बच्चों के लिए सुरक्षित हो, आकर्षक पैकिंग करें, सोशल मीडिया पर प्रचार करें, उचित मूल्य रखें और सरकारी सहायता भी मिलती है। जी हाँ, भारत सरकार वोकल फॉर लोकल और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अधिक जानकारी के लिए आप MSME मिनिस्ट्री या स्टार्टअप इंडिया इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाथ से बने खिलौने भारतीय कला और परंपरा की पहचान है। ये व्यापार कम निवेश में शुरू होकर बड़े स्तर तक पहुंच सकता है। ये आपकी शौक भी तो है। ऊन के खिलौने आप बनाइए, कपड़े के खिलौने बनाती रहती हैं लेडीज, बना बना के बुन बुन के थोड़ा फूल थोड़ा कुछ बनाती हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर स्टॉल लगाकर बेचती हैं। ये रचनात्मकता, गुणवत्ता और सही प्रचार पर ध्यान दिया जाए तो ये व्यापार रोजगार और आत्मनिर्भरता का अच्छा माध्यम बन सकता है, क्योंकि कम निवेश में शुरू करके बड़े स्तर पर पहुंचा जा सकता है। कोशिश तो कीजिए।

मासूम फिल्म की रचना आपने सुनी गौरी बपट, गुरप्रीत कौर और वनिता मिश्रा की आवाजों में। अब कुछ भी कहिए, महिलाएं ही घर का केंद्र है, ठीक है ना? क्योंकि अब देखिए, महिलाओं का हमारा कार्यक्रम है, लेकिन महिलाएं घर का केंद्र, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जयशंकर प्रसाद जी अपनी कामायनी में लिखते हैं, यहाँ कामायनी उनका एक महाकाव्य है, उसमें लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नखपत्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के जीवन में जो प्रफुल्लता, शांति और आनंद है, वो उसकी अपनी उपलब्धि है। जी हाँ, क्योंकि वो हर हाल में खुश रहना जानती है। नारी का आनंद बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि वो घर का केंद्र है। महिलाएं जो है वो घर का केंद्र होती हैं। अगर वो उदास हैं, दीनहीन हैं, थकी हुई हैं, हारी हैं, तो सारा घर परिवार उनकी जो परिधि में घूमता है ना, वो उदास और हारा हुआ हो जाएगा। इसलिए महिलाओं का खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की जो धुरी है, घर का जो केंद्र है, वो महिलाएं हैं। एक स्त्री के जीवन में जो आनंद, शांति और प्रसन्नता होनी चाहिए, वो उसे नहीं मिल पा रही है। स्त्री का सुख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो घर का केंद्र है। मैं बार बार एक ही बात इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए, और आप खुद भी महसूस कीजिए इस बात को कि आपके घर में जो महिला है वो घर का केंद्र है। यदि वही उदास, निराश या पराजित अपने आप को समझने लगेगी, जिसके चारों ओर पूरा घर, पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो सभी उदास और पराजित हो जाएंगे ना, है ना? और भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नारी के महत्व, शक्ति और सम्मान को दर्शाते हुए कुछ श्लोक भी हैं, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा, आदर, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ कोई भी अच्छा कार्य फलभूत नहीं होता, यानी निष्फल हो जाता है। ऋग्वेद का कथन है कि गृहिणी ही घर कहलाती है, नारी के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती। जो पुण्यात्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप में, और सज्जनों में श्रद्धा और कुल की मर्यादा के रूप में लज्जा रूप में निवास करती है, उसी देवी को हम नमस्कार करते हैं।

हजरत लता मंगेशकर की थी आवाज थी, फिल्म का नाम चोरी चोरी। जी हाँ, आप कैसे भुलाया भी जा सकता है, भुलाया ही नहीं जा सकता घर की महिलाओं को, यही तो उनका स्वरूप है क्योंकि वो घर का केंद्र है। और आज के समय में जो नारी है ना, इसलिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से भी चल रही है, जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण सबसे प्रमुख विषय है। अब देखिए, नारी शक्ति बंधन सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को विकसित भारत की नींव बताते हुए इसे लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई गई है। आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहना जैसी योजनाओं का सक्रिय क्रियान्वयन भी चल रहा है और उन पर काम चल रहा है। लोग अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो अपने आसपास के जो दफ्तर हैं वहाँ पता कीजिए। इसके अलावा छोटे व्यवसायों के लिए भी महिलाओं को बिना गारंटी ऋण सहायता दी जा सकती है। ये सब चीजें ना साइट्स पे उपलब्ध है। आजकल सोशल मीडिया है, आप डिजिटल हो चुका है इंडिया, तो आप गूगल पे या किसी भी ब्राउजर पे टाइप कीजिए महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिना गारंटी ऋण भी आपको सरकार दे रही है। अब बदलता सामाजिक दृष्टिकोण भी इसमें काम आ रहा है। अब महिलाएं न केवल घरेलू कार्यों तक सीमित है बल्कि वो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही है। संक्षेप में यानी शॉर्ट में मैं कह सकती हूँ कि आज की भारतीय नारी सशक्तिकरण की ओर मजबूती से बढ़ रही है। उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए अभी और भी प्रयास किए जा रहे हैं, होने भी चाहिए, लेकिन घर में ये सब प्रयास तो चल ही रहे हैं। लेकिन घर में मैंने कहा ना, महिलाएं घर का केंद्र है, उन्हें खुश रखिए। उन्हें अगर खुश रखेंगे तो महिलाएं अगर खुश रहेंगी तो घर भी आनंदित रहेगा। इसलिए अगर वो रूठ जाए तो मना लीजिए जरूर।

लीजिए। और ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में आज का पंचीपन से। मुझे यानी राधा को इस कार्यक्रम से दे इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए ये गीत।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क

0: भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन सोच नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लेकिन कहा यह जाता है कि देवानंद ने भी बहुत सारी फिल्म में कई हिस्सों में अपनी भागीदारी डायरेक्शन के मोड में भी निभाई थी। तो इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनवा देते हैं इस फिल्म का बेहतरीन गाना आपके लिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज बात हो रही है फिल्म तीन देवियां की। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक की है जो एक साथ तीन अलग अलग स्वभाव की महिलाओं के आकर्षण में फंस जाता है। उस दौर के हिसाब से ये कहानी काफी मॉडर्न और काफी बोल्ड मानी गई थी। फिल्म के का जो मुख्य किरदार है वो है देवदत्त आनंद, जिसे निभाया देवानंद ने। देवदत्त एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करता है, कविताएं लिखता है और सपनों की दुनिया में जीता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में तीन अलग अलग महिलाएं आती हैं, मासूम और सरल नंदा, ग्लैमरस अभिनेत्री कल्पना और रहस्यमयी और अमीर महिला सिमी। तीनों से प्यार करने लगती हैं और देवदत्त खुद भी नहीं समझ पाता कि उसका असली प्यार कौन है। यही उलझन इस फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, स्टाइल भी है और सबसे बढ़कर शानदार संगीत है। श्रोताओं, बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट की, जो आपको पता चल ही गई होगी। देवानंद साहब हैं, नंदा है, सिमी ग्रेवाल, कल्पना मोहन और आईएस जौहर। और एक खास बात यह है फिल्म की कि फिल्म में रेडियो की दुनिया की मशहूर आवाज अमीन सयानी भी सुनाई देते हैं, जो उस समय श्रोताओं के दिलों पर राज किया करते थे।

श्रद्धा, फिल्म के अगर ये देखा जाए कि क्या उसका बजट रहा और कितना उसने कमाई की, तो इसके आंकड़े प्रॉपर तरीके से तो नहीं पता, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये एक मिड बजट स्टाइलिश रोमांटिक फिल्म मानी जाती है और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया। खासकर उसके संगीत ने फिल्म को एक लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखा। तीन देवियों को कोई बड़े अवार्ड्स भी नहीं मिले, लेकिन उनके संगीत की और प्रस्तुति की हमेशा तारीफ हुई है और इसे उस समय की एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। और लोकेशंस ज्यादातर महबूब स्टूडियोज में ही हुई। उस दौर की मुंबई की सड़कें, बस और आलीशान बंगलों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। अगर तीन देवियों को आज भी याद किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका संगीत। संगीत दिया था महान संगीतकार SG बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो सुन लेते हैं इस फिल्म का वो गीत जो आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गीतों में गिना जाता है।

आइए अब श्रोताओं के संदेशों को पढ़ देते हैं। हमारे पास सबसे पहला संदेश आया है वीरम गांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार और प्रवीण सुल्ताना का। साथ ही छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा जुड़ रहे हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदेव सिंह, गुरनूर, गुरुलाल, अभिराज सिंह जुड़ रहे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता पी एस नोहावकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मोहरेकर। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं। सुरेश यादव, अनीता यादव और नेहरू चौक पेठर से ये हमारे श्रोता हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से जुड़ रहे हैं। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल का संदेश। इसके अलावा अजीत भवसार जी का संदेश है जो कि काफी लंबा है, लेकिन ये पूरा संदेश तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ आपके नाम को हमने यहाँ कार्यक्रम में शामिल जरूर कर लिया है। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या जुड़ रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। पहाड़गंज मुल्तानी डहाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का संदेश। साथ ही संदेश मिला है सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का। तो हमारे ये सभी श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने संदेश भी हमको भेजे हैं। तो श्रोताओं, बात कर रहे हैं हम फिल्म तीन देवियां की और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, ये जो फिल्म है ना, इसकी खासियत ये भी है कि ये फिल्म आंशिक रूप से ब्लैक एंड व्हाइट और आंशिक रूप से रंगीन है। उस दौर में ये प्रयोग काफी अलग माना गया था। इसके अलावा ये जो फिल्म है, इसका अंग्रेजी वर्जन भी बनाने का सोचा था ओ बॉय एंड थ्री गर्ल्स, इस पर भी काम हुआ, जिसमें संगीत दिया था एस डी बर्मन के सुपुत्र आर डी बर्मन ने, लेकिन ये जो फिल्म है ये रिलीज नहीं हो पाई। और इस फिल्म की कहानी में थोड़ा सा पश्चिमी टच था,

इवन रोमांटिक फिल्मों के गाने जो हैं इसमें ज़्यादातर कॉपी करने की कोशिश की गई थी, इस तरह के गाने इसमें डाले गए थे कि अंदाज थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो गया। तो उस समय में ये जो कथानक था इस फिल्म का, ये भी काफ़ी बोल्ड था कि एक व्यक्ति तीन महिलाओं के साथ एक टाइम में किस तरह से प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ जाता है, तो उस दौर में ये एकदम अलग था। और एक और बात यह है कि उस समय दर्शकों ने फिल्म को खास तौर पर संगीत, फैशन और देवानंद के अंदाज को सबसे ज्यादा पसंद किया था। तीन देवियां सिर्फ एक ऐसी फिल्म नहीं है जो एक साधारण फिल्म हो, ये एक 60 के दशक की रोमांटिक सोच को, संगीत को और स्टाइल का एक आईना था। उसे देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने स्टाइल को भी चेंज किया, और उस समय पे कहा भी जाता था कि देवानंद जो है ना एक स्टाइल आइकन बन गए थे। और गाना जो है ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये तो जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि ये गाना अब तक भी रोमांटिक गानों में से एक गाना माना जाता है। अब सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अपने मेल्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। और अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में। छोड़े जाते हैं आपको इस गीत के साथ।

0: इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण मियां खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली में हुई है। मीटिंग विच हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद से सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों गलबात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के तीन दिन दौरे से गंगटोक पहुंच गए ने। पंजाब में 8 नगर निगमां 75 नगर कौंसलों से 20 नगर पंचायतों की चोणों लिए अज वोटा पै रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 31.6% वोटिंग दर्ज की गई है। आईपीएल क्रिकेट में अज धर्मशाला के पहले क्वालीफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग अज नवी दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीटिंग में हिस्सा लिया। क्वाड देश हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी और समुद्री खेत्र में गतिविधियों से हालत की निगरानी लिए एक सांझी संचालन स्थिति से सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे, फिजी में एक आजमाइशी बंदरगाह प्रोजैक्ट और समुद्र हेठां केबलों बिछाउण ते सहयोग बारे एक माहर पैनल स्थापित करन ते विचार करेगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग के मुख नतीजों विचों एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क नूं अंतम रूप देना सी। क्वाड देशों ने भारत

ही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना।

तुम्हें भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुच तबा।

0: आकाशवाणी करगिलीन।
1: अरे यार ये माई किराया दवाई कैसे इंतजाम करूं?
2: एक तरीका है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे?
2: अपने बैंक की तफसीलात दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना आसान?
3: अरे काहे का आसान, ये मनी म्यूल है, दूसरे के अकाउंट से गैर कानूनी पैसा मुंतकिल करते हैं, जुर्म है, जेल हो सकती है।
2: ना यार ना, मुझे जेल नहीं जाना है।
3: अपने बैंक अकाउंट को महफूज रखें, किसी को इस्तेमाल ना करने दें। RBI कहता है
4: जानकार बने चौकन्ने रहे।

0: rangi business un lasket tangmifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya faili thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना,
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: 그래 기디 셀레벨레 그룹 페안누 야 가츠옥슬라 얀타가 고마나 콘스 록스 베츠주 스포차나 스만나 손나 룻나 야 에세지 길단마나 셀레벨레 그룹 치 길단마나 가츠옥라 코이 타랍네 얀타 록실루주
1: 사실 주크리아 네아 코네 벨랑아 찬 셀레브레블 구차스나 아찬 손땅에 쪽 이야데크나 그린하우스 다 시즌치데 잭시 솔라르 팔레스틱 땅에 쪽
0: 나나
1: 이야돈 챗바나 엔테안 다르카스 콘세 사프사리 그야 렌치즈 쪽 돈가 차스 켜면 쪽 근데 그냥 로바지 2016 2017 차나가 찬 퀸즈 로그 바세 쪽 이야 에세지 그룹에노 사가 얀 땅그룹에 잠이었나 10000 퀸즈 베네 땅세 쪽
0: 야야
1: 이야 가서 되게는 다산 나가자 손 부크에게는 사르세리에 타바
0: 응응
1: 바자랭 요나 가자 소르베 타브나 부크에게는 20루피아 30루피아 타바
0: 가사
1: 가사
0: 예예 물론
1: 야 쪼바세 디아 손은 가자 이야 폐생 가자 갸라 손은 타시주 답카논 라가자 메돌 칸삭 마타 마자레 마타 손세 쿠이카 합쳐 바세 폐세 고려마 손삭
0: 가사
1: 콘세
0: 예예
1: 디아 손은 가자 답진이야지
0: बिल्कुल मक्सद ऐसी बातें मैं मना रहा हूँ कि गा मेमान सीज़ ना ता रियला जोस्ता जी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बोला तो त्यां दी एसएजी इंस्ट्रूल ना का तो कौन सा ता या गति लस बोला था से हाइब्रिड इन मीड गला क्वालिटी आता सुन क्यों से ता था जो चाना गति संग या लापरवाही मा बा गता मलसा मोम दो थोनो पर जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गचु डिपार्टमेंट गता जमींदार ची का रोक्स बेनु ना सब्सिडी थो बना या प्लास्टिक ची या जाली थो बना गता न्याले दुखान जी चोक्षी सब्सिडी जो से दुखानी गता मीमांस रंग थोनो हाजू चान आदि चोकदा गते या गलत लशी मा बा गा चलक ची गता गचु मक्सा ची मीना ता थोबेदना देमिंग ना कोल ना गता फंकेशन चाचा चपतिमा चीसा मेडिया रेस दिस उगला कोन बो रुक्स एंड दुक्चास बसे गतांग या सुनल ला गतांग डिपार्टमेंट जे रुक्स मेट बंगाती रुक्स गते स्टार बत पिन दरे कोन गता तो रुक्स बना गचुक फंकेशन चीसिन
1: या जो योग सनागा अच्छे नमो चीज ना शुक्र बचा गवर्नमेंट इस तांग जरे बेकदरी मी बचा गवर्नमेंट इस तांग मन गवर्नमेंट माल पायांग अति का हक चेनुक नचा जाली में पिन 2017 सखपा नते
0: कसा
1: थर्मा स्या चेन्यो चुक थर्मा जातर चेन्यो चुक थर्तागला
0: या
1: अच्छा दोन स्क्योरे नते थर्मां का तस स्क्योरे या जाली अजो खतागरी तांग से अच्छा ताबत पिन देगना अच्छा नॉर्मली माना युज्दे छोट पना ए युल्दे गामी बालांग इस मजाक पना अच्छा जाली छाना एंता एसएजी गामा जाली लेपचिन हे जरे गाचा खंबथा जाली तांग तो गाचा आधार कार्डन खरे देखने जाली गाचा सो दाज ये चुक सो बारां ये चुक
0: कसा
1: साजला एलेकल्चर पी मैडम रजिया खून ना रेसे गाचिया अफसर खच खून तायों से ना या रेस्टर आ चुकी हैं तेज गागा चों मत गागा मिचों मत जर भी रेस्टर चुक जाक्षिन ची नीला 2012 याने एलटीजी एसएजी रजिस्टर शेयर यद पूरा देखने देखा मैडम रजिया यों से ता से ना मना मरा मुना फ्रून ला चुकी चांग अरे सांबुली स्प्रिचा
0: बेशक
1: बाकी ना रोक ना गवर्नमेंट ने यं बोल लगतोत बना गता आगे ये नज़ो योक्सन खुदा गता नन में चंदे
0: बिल्कुल
1: तुक ना गती मेहनत नस्पेरा तना गवर्नमेंट इस सोलार ची तांजी और जाली तांजो दरे जाली जिंग ची तांसे तो एक तब ना या सोलार पे बालां ची कक्षे देनी बना गता ना सुस पैदा यों गती उम्मेद गना गरे सां तब चांगा गती ग्रुप पे ना जोन बसे खोने ना क्यों चा नुकसान गुजी में बात देखना गती सगस गोबिक तबना गोबिक तबे चुक अलिक तबना अलिक तबे चुक सनमेक या हाथ तबना हाथ तबे चुक दो सौ बाना गाज गाची ग्रुप भी बमुन ला खिंतेस डायरेक सब्जी तबशी नरे डायरेक आलू तबे जरे नरे जिंग पुला डायरेक आलू तबशी
0: कसा बिल्कुल मक्सद आज बातें मैं मना रहता हूँ कि यार इस दिन सोचता गवर्नमेंट इस तंखानी रोक्सुन प्लास्टिक जादिन या जोस्ता जी का कोले गेट पना दिरिंग यारंग मिंगचन सोंसे या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंग आतां स्टाफ ओन यंती शितायों से यारंग दिस एवार टून संगन पान यारी यारंग स्टोर बचान गांग मा यारंग मेहनत ही का सोंसे इनका नाच फाती माचिया जब आतां दो थों बचे न्यूट की आते रियत कारगिल यानुना यंग आशी फाती मा सोगरा जखा जी को जब नंग आती शिलिक चिनें में जो लेक निजदुल्ला रियत कारगिली या आतां गुए का दिल्ली सोंसे कौन संगन पारिक थोक खाने जो दिल्ली असलियत से हाजो चाना दिस चोला दिन गम मेहनती का गता कौन रोक्स ना मदद या गता लुस्यूत पना दे मेहनत तो गते जाय मचा चुपा स्टोम बस्तों चुपा इंसान गला जोस्ते के मेहनत बनी तो संगन पाना गता तो बचा और यंबो दरे गता अतापे तमले आयो जो बोप्स ना सार्ट इन दरे दिस साउ दिस चोला गता ची शिन खान की देसे के ना गते मिराज बा मिराप्सिस फंतोस लेने चाचिन जो गला जोस्ता ची के दिस साल गते गेट ना यदि कने गता मियोंग चिक दि कने गता मिरांग चिक दि कने गता या मिथोप चिक गता मिशाचा बक्षी दाश वाति मा यदि कने गते जंग स्पराउ फ्रिक्टिंग गते फ्रलुक्स बेत की ता यरे सुनमे रिक्स यानु सखेति का अलुता बत जजु यंग दु मेन मा यंग चीची रिगे रिस तपचा जिंजु सखेतुने
1: कसे जो हाक तपसे दिया पालक तपसे जोकंदार तपसे ज्यादातर

मीडिया में ना एफएम चैनल का अच्छे आकाशवाणी कर के लिख नजर इंच होत कस्ता पुरगिया फीचर चिंगियन में जात चांगरा ना फुंगरा

0: 놀아줬잖아.
1: 늑당 짜득도 같이 양나가 당하래 장맷 빈촌라이 이건 놀자장.
0: 자나 아침에는 봉라둑밭 빈주하.
1: 봉라둑자 가자.
0: 니야 박수스. 누워서 채스강만 빈주하.
1: 가자 누워서 채스강.
0: 야 다르군이 왁스만 우나가 땅 봉라둑스 대가나 굴라 양 스피드라는 지 지리밭 빈.
1: 누구상 유앗 빈 야우스 남부 탁밭 빈 남부 수류 앞자 탁밭 빈 수아 별밭 탁밭 빈. 내가 봤을 때 세상 맞긴 맞아요.
0: 야, 다나가디 로사르즈레 주 로사랑 바트빈.
1: 로사랑 바트빈 주 로사르라 스케치요 나리려 초세 아치 너무 여러기 봤나 옌도포 초세려 나토 출력 범했지 까마타세 피샹타트야.
0: 다나디아 카르코르포사가 용들지.
1: 내가 카르코르포가 마 용들지인지야.
0: 다나샤네 양보 파파탄테
1: 치고. 샵 난양보 파파 양마 브라시 말에 상면 빈촌라.
0: 마시스.
1: 어.
0: 자나 인낭 바자지 타타나 로발로 디르가몬디 산몬 야 얀타가 데소서 가모 옛핀소 포라두피 르군 푸란 마나다레 나가타가 수나솔로 마츠 툭피
1: 나솔로 마멧 피 데카라 다치둑 나야 티월타 츠둑 세양 마나 엔다 차메데 마나
0: 수나수아 타수아스 녜트 페소 메스 녜트 페기아스 돔 바다 푸 차나 야탕
1: 샤즈고 세타 투 주양 창 덴다 바멧 툭 록세 작페 덴디 카시멧 툭
0: 마시스
1: 잡쿠르쳇쭉 잡툭콜쳇쭉 야다자티데나 망마르쭉파지야 야돈폴렙나레 야람토돈폴렙나 나그마르티쭉 나그마리 야랑주브나 잡쿠르낭 나마타쭉야 줄리마타쭉 크욧카네스 줄리마타세로 자탄쭉파지야
0: 헤익잠지용용마핀
1: 카 크루도레가 용마핀 그 페나우스므레가 용마핀 말짱레 네멧 카 카마나 자바다중쭉파데테나나
0: 마시스 chana ba cha ji ta nga ta nga du chi ja cha song du chi thu chang song ju chana nga ta tar ki song song
1: ju
0: in nang da re mi mang sul la kha shi sing khom chi met ra ga me gbet pa ju sir ku
1: chana me shukrana ma ne me gya da re sing khom cha me shukrana me chu chu na chu chu mohabbat cha me kha shi ya chu chi ka manon mi dom ba cha yo diang ma na kho cha me cha ne nang ni ma yin na he cha bi ka du ge ya ya chu chi ka chu chu manon mi kho je ka Ya na na kalle ni kamano ma su na ya
0: mal major ba
1: mal ma jorba tamal den de chya
0: ka manun ma di duniya ik anar gal
1: bakhshish bakhshish gal
0: ya bakhshish jo ba chaji gacha na mugras pe ri uju sari mozare de assalam alaikum
1: shukriya meherbani
2: Jo assalam alaikum nga point ne jo ni ma haje abdullah de janab nga lo song sen janab ni shis bin ni sbi asisal ये यार देचना जुर गुण लबे सुजना दरे दिचा गुण रन देचना गुण ला दिसोला दरे बुखारी या हिटाची सिंह देचना खास में तो दे शेर पर पचा दे कौन से तो आदे थाबनी का स्कम से जुगा थब खत्तु गई जाक से दे बस स्कम से और देश की पुतल से जिना चावा गांधी संते का स्कूल तो दे तो पेंदु चा देसना मन यो चंगा ता मन नाम खास में तो दे कना और गुण सर गुण लेना एरदे फुरा छ सुजना बे फोंरा Orang sana yang ngacai ini naga jatrika suno suyo semua pasu biru jam sana, ane sal bal kalau tu misa tu su tu jitu suzia real kalau tu dia berum berik tangin tarik tangan duk seban tu san pel sana yang nyal baca tu, iya jadi dia berum pun butuh tu dia kena pilar noro khusus kalderan norda macam ni, yang hendak saga syarif bimio cendang nak ker grongan sana असली नो रिफेशन चीन नॉर्मल 50 नो से लेबे चुक दे शर्बी प्रो शर्बा चीज दा छोइंडा से चीज पे ना कोई पुपी देखो खुदस कलबा दे ना लंबा ता सन फे जो दिन दिन नो पे जोक दे ना दोन ला लोगा लूता मचु रागा रूता मचु या दि लोग पा लू चुक सिकतों दि लाग पा रू चुक सुमतों दा दिका कुरी हसाबी के रूता मचु दे रूगा ना ता मचु तना यदि नो छोसना यरा मिन ताचु यदि दि मिन गरे लुलेन दिदि मिन गरे रुलेन त तरीका खदस कल्प न खदस कल्प नर गम नर ति छु छु नि सि साते छु देका सातेना फिशा सगत गय छु मन ग्रोमा गरिब गोरबा यार दा सप न गम सोस ताचु न तो दे न तो गम चंगा तंग सने हरे बे जने फुसंग गय छु पुर हजो बसे गम हजो ताचु Ya, dekana des piti den khodas kalbatsu. Khodas kalbasana mar damu jinab mar salim mar karpamar gombu khonsu.

0: rangi business un lasket tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya faili thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना,
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: मीडियम वेव्स ने एफएम चैनल उनका मचे आकाशवाणी करके लिखे नजर जी और वक्स वो खबर निशन का सदा आकाशवाणी से करे खबर न तब सरा और दिबे लीला खिरबास।

0: सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: आज़मीन हज आज मैदान अरफात में वकूफ़ अरफात में मशगूल हैं। आज़मीन ने आज मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुना और जमा बैन सलातीन के तहत नमाज जहर और असर इकट्ठे अदा की। इसके बाद उन्होंने आलमी इंसानियत की बका नीज पूरी दुनिया में अमन अमान और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। आज़मीन आज मगरिब से पहले मुज़दलिफा के लिए रवाना होंगे, जहां वो रमी जमरात के लिए कंकरिया जमा करके नमाज मगरिब और ईशा एक साथ अदा करेंगे। आज़मीन वहां रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और कल सुबह वो दोबारा मिना के लिए रवाना होंगे, जहां वो इलामती तौर पर बड़े शैतान पर कंकरिया मारकर जानवरों की कुर्बानी करेंगे और हल करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल ईद उल अजहा की तकरीब सहित तुजको एहतशाम और पूरे मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस ताल्लुक से आज बाजारों में काफी गहमा गहमी देखने को मिली और लोग दिन भर कुर्बानी के जानवर, गोश्त, मुर्ग, बेकरी मलबूसात और दीगर अशियाई जरूरिया की खरीदारी में महव रहे। ताहम शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर कस्बजात में कहीं कहीं पर ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर भी देखने को मिले। पूरे जम्मू कश्मीर में कल नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हो रहे हैं। इंतजामिया ने इन इज्तिमात के अहसन इनकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए हैं और ज़ियारतगाहों और मस्जिद के इर्द गिर्द सफाई सुथराई और पानी व बिजली की बिलाखलल सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने वादी की कई मस्जिद, खानकाह और ज़ियारतगाहों पर नमाज ईद के अवकात मुश्तहर किए हैं। आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ जनाब साहब सोहरा और आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में नमाज ईद सुबह 9 बजे, ज़ियारत हजरत पीर दस्तगीर साहब खानियार और ज़ियारत मीर सैद याकूब साहब सोनवार में सुबह 9:30 बजे, ज़ियारत हजरत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में सुबह 10 बजे, जबकि खानकाह मौला श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद बाबा हनीफुद्दीन ऋषि रटसुन बीरवा में ईद की नमाज सुबह 8:45 पर अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद टीआरसी श्रीनगर में ईद नमाज सुबह 7 बजे, जबकि नमाज ईद बटवारा श्रीनगर में सुबह 7:30 बजे। जामिया मस्जिद हनफिया नाजन बीरवा में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। जम्मू के मरकजी ईदगाह रेजिडेंसी रोड में नमाज ईद सुबह 7:30 बजे अदा की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने कहा कि इस तरह के त्यौहार हमें हमारे लिए खुशहाली और तरक्की का पैगाम लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस ईद के मौके पर लोगों को गुरबा और मसाकीन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने दुआ की कि ईद हमारे लिए फलाह बहबूद और अमन अमान की नवीद लेकर आए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये दिन हमें दयानतदारी और सच्चाई इख्तियार करने की तरगीब देता है। मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद के रोज नादारों और समाज के मफलूकुल हाल लोगों की मदद करें। उन्होंने दुआ की कि ये त्यौहार हम सब के लिए तरक्की, खुशहाली और अमन अमान की नवीद लेकर आए। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने भी लोगों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबिनी वजरा सकीना इतू, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राणा और सतीश शर्मा ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे और रवादारी का आकाश है और हमें यह त्यौहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने भी लोगों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के एक पैगाम में उन्होंने दुआ की कि यह त्यौहार जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों की नवीद लेकर आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं और गुरबा और मसाकीन को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वक्फ बोर्ड के एक मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान और सूबाई सदर एडवोकेट

0: शौकत अहमद मीर, पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज, बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान आला अल्ताफ ठाकुर, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासिन, जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जे एम शाहीन, जमीयत हमदानिया जम्मू कश्मीर के सरबरा मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती अजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने लोगों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: ईद उल अजहा के बाबरकत मौके पर मैं तमाम अफराद को मुबारकबाद ही पेश करता हूँ। ये ईद हमें तस्लीम और रजा का पैगाम देती है। वालिद और उसके फर्जंद ने इस अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए जज्बे ईसार की ऐसी मिसाल पेश कर दी कि इंसानी अकल आज भी मुतहय्यर है। ईद सादगी से मनाए, गुरबा मसाकिन और अपने रिश्तेदारों और कराबतदारों का खास ख्याल रखे, माहौलियात को न बिगाड़े। जानवरों को जबह करते वक्त दरिया नदी नालों चश्मों में कुर्बानी के गैर मुस्तमल अज्जा फेंकने से इज्तनाब करें, क्योंकि उनसे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। प्लास्टिक की जगह मुतबादल चीजों का इस्तेमाल करें। खुदाई कुदूस से मुल्तमिस हों कि ईद हमारे लिए बायस यमन बरकत साबित हो।
0: जिन दीगर शख्सियात ने लोगों को मुबारकबाद दी है उनमें इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर के बानी चेयरमैन एडवोकेट अब्दुलरशीद हांजूरा, एजैक के सदर फयाज अहमद शबनम, जे एंड के बिलाल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शौकत अहमद लोन सागर, कल्चरल फोरम चुकुर पटन के सरपरस्त सागर नजीर भी शामिल हैं। ईद उल अजहा के तनाजुर में बुजुर्गों को भी एहतियात से काम लेने की जरूरत है। इस हवाले से बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: चूंकि गर्मियां हैं इस ईद पर बुजुर्ग लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। गोश्त खाएं लेकिन मॉडरेशन में, तेल वाली और हेवी मील्स खाने से परहेज करें, कलेजी गुर्दे और बेजा जैसे ऑर्गन मीट कम मकदार में खाएं, खासकर अगर गाउट, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट या किडनी की बीमारी हो। पानी ज्यादा पिए, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड जूस पीने से परहेज करें। खाने के बाद हल्का वॉक करें और अपनी दवा वक्त पर लें। गोश्त को अच्छी तरह रेफ्रिजरेट करें और ज्यादा देर तक गर्मी में बाहर न रखें। घर के बुजुर्गों को चाहिए कि जानवर की खाल, अंतड़ियां और दूसरे वेस्ट को म्युनिसिपल गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक तरीके से डिस्पोज करना इंश्योर करें, ताकि कुत्ते, मक्खियां, बदबू और इन्फेक्शन से बचाव हो सके। सफाई भी सेहत के लिए जरूरी है। ईद मुबारक।
0: दरियासना वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गलवानपोरा बड़गाम जाकर वहां हाल ही में एक मासूम बच्ची के साथ पेश आए वाके के सिलसिले में गमजदा अहलखाना से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वाके से पूरे समाज में एक दुख की लहर दौड़ गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वाके में मुलवस मुजरिमों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम ने एक हुक्मनामे के जरिए से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आम लोगों को खबरदार किया है कि वो गलवानपोरा बड़गाम में हाल ही में कत्ल की गई मासूम बच्ची की तस्वीर और उसकी शनाख्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करने से इज्तनाब करें। डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज जम्मू कश्मीर ने मुख्तलिफ कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के सिलसिले में उबूरी कॉलेज अलॉटमेंट और कट ऑफ ट्रेंड्स एडमिशन पोर्टल पर रखी हैं। उम्मीदवार हतमी एलोकेशन से पहले अपनी तरजीहात को अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को हमने आज से ही अवेलेबल कर दिया है। जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट्स अभी तक हैं, उनका एक प्रोविजनल लिस्ट पोर्टल पे अवेलेबल कर दिया है, इंडिकेटिव सिलेक्शन लिस्ट, जिससे उनको आइडिया आएगा कि उनका सिलेक्शन इस प्रोग्राम में हो सकता है। और उन बच्चों को आइडिया आएगा कि जो इस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है, उनको आइडिया आएगा कि हमारा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता है, तो अपनी चॉइसेस और बढ़ाएंगे, कॉलेज और बढ़ाएंगे, प्रोग्राम्स एड करेंगे। तो एम भी है, आज हमने लाइव कर दिया है पोर्टल पे, अगर वो विजिट करेंगे स्टूडेंट्स अभी पोर्टल पे, हमें 40,000 से ज्यादा बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई है अभी तक। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये एक इंडिकेटिव सिलेक्शन लिस्ट है जो रिवाइज होगा एज पर द कंडीशनलिटीज, जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी या जो और एप्लीकेंट्स अभी आएंगे, जो भी चीजें होंगी वो सारी फाइनल लिस्ट में आएंगी। jkadmissions.in है ये URL, तो हमें ये कल शाम तक 5 बजे तक खुली रहेगी लिंक, लेकिन इसमें ये चीज भी हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है इसको एक्सटेंड करने की, तो दैट इज ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन, उसका भी हम देख रहे हैं कि एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर एक्सटेंशन होगा वो नोटिफाई हो जाएगा।
0: डायरेक्टर जनरल पुलिस नायलन प्रभात ने आज पीसीआर श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ईद उल अजहा और आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में की जा रही तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जियारत गाहों और मस्जिद में होने वाले बड़े बड़े इज्तिमात में लोगों की निजामत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि ईद और यात्रा के लिए हर तरह के इंतजाम किए जाएंगे। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर से खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9

0: 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलु आफ्ताब सुबह 5:22 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:34 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं आबिदा अख्तर। आज मैदान अरफात में लाखों फर्जंदान तौहीद का इज्तिमा एक रूह परवर मंजर पेश कर रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ खितों, जबानों, नस्लों और रंगों से ताल्लुक रखने वाले आजमीन हज सफेद अहरामों में मलबूस एक ही रब के हजूर सर बसजूद है। वकूफ अरफात हज का सबसे अजीम रुकन है जिसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। यही वो मुकद्दस लम्हा है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हज अरफा करार दिया। आज का दिन बंदगी, आजिजी, दुआ, तौबा और मगफिरत का दिन है जब लाखों लब एक साथ अल्लाह ताला की हमदो सना और इस्तिगफार में मशगूल हैं। अरफात की सरजमी पर जुहर और असर की नमाजें जमाबैन सलातीन अदा की जाती हैं जो इस अजीम इबादत की रूहानी वहदत और नज्म जब्त की अलामत है। ये मंजर इंसान को कयामत के दिन की याद दिलाता है जब तमाम इंसान एक मैदान में अपने रब के सामने हाजिर होंगे। आजमीन हज आज अपनी जिंदगी के गुनाहों से माफी मांगते, उम्मत मुस्लिमा के इतिहाद, अमन और खुशहाली की दुआएं करते दिखाई देते हैं। सूरज गुरूब होने से कबल काफिले अरफात से रवाना होकर मुजदलफा पहुंचेंगे। मुजदलफा की रात सादगी, सब्र और इबादत की एक मुनफरिद मिसाल होती है जहां आजमीन खुले आसमान तले कयाम करते हैं। यहां मगरिब और इशा की नमाजें भी जमाबैन सलातीन अदा की जाती हैं। इसी मकाम पर रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा की जाती हैं जो बातिल शैतान और नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत है। कल सुबह आजमीन दोबारा मिन्ना रवाना होंगे जहां रमी, कुर्बानी और दीगर मनासी के हज अदा किए जाएंगे। इन्हीं मुबारक मराहिल की तकमील के बाद ये खुशनसीब लोग हाजी कहलाने का एजाज हासिल करेंगे। हज दरअसल इंसान की रूहानी तत्हीर, कुर्बानी, मसावात और अल्लाह ताला से ताल्लुक की बंदगी को मजबूत करने का नाम है। आज अरफात से मुजदलफा तक का ये रूहानी सफर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इतिहाद, उखुवत और ईमान की एक अजीम याद दहानी है। तबसरा खत्म हुआ, शब बख़ैर।
2: मीडियम 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज़ के अलावा एफएम चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज है। 8 बजे चाहते हैं, आइए सामयीन प्रोग्राम समाप्त करें फौजी भाइयों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को दो आंखें बारह हाथ फिल्म से ये गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में भाभी फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म बाबी में ये गीत। बोल राजेंद्र किशन के और तरस बनाई थी चित्रगुप्त ने। आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म का ये गीत अशोक भोसले की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म बाजार में ये गीत बोल मीर तकी मीर की और तरस बनाई थी खयाम ने। ये सुनते हैं सुजाता फिल्म से गीत तलत महमूद की आवाज में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और तरस बनाई है एस डी बर्मन।

तलत महमूद का भी आप सुन रहे थे सुजाता फिल्म का ये गीत। बोल मजरू सुल्तानपुरी की और तरस बनाई थी एस डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो कौन थी फिल्म से गीत। राजा मेहदी अली खान के इस नगमे को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर को फिल्म हमरास में ये गीत, बोल साहिर लुधियानवी के और तरस बनाए थे रवि ने। आइए सुनते हैं वारिस फिल्म से एक ही, तलत महमूद और सुरैया की आवाजों में, बोल कमर जलालाबादी के और तरस बनाई है अनिल विश्वास।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए मेरे मोइस और एफएम चैनलों पर यह आकाशवाणी करील है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी अंग्रेजी उर्दू में खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

0: सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस

0: भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्रा के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: एक्सपेंसेस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees. To 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in the Home Ministry, will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day,

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपए फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है, जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मंसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ फौज इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरतहाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक आजादी सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया, जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया, जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने टैप्टोलॉजी के ऑर्किडियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी।

जिला बर्दवान थे दिशे एक चुनु घा में के जा सो घामो नो मसलो चुरलिया सद रो जोई गाओ अनिसी शख्सियत न सिर्फ बंगालर बल्कि रस अदबी शख्सियत पूरे बरसगीर अदब का सकाफती विरसी एक रोशन बाब है खन सजार जारवी रसी पैदाइश हर कला अकीदत का एहतराम साथ मने वो जा था कि नाव नस्लर रसी तालीमात रसी शायरी तो रसी जद्दजहद जो बही आगाही बोई बोजोन सजार जारवी काजरी नजरुल इस्लाम चुनो तो गैर मामूली जहानत एक तुने तखलीकी सलाहियतों एक मुजाहिरा थे वो जलो रिसी ताल्लुक एक गरीब खानदान के

या तो एक मुजाहिरात थे वो जलो। रिसीतालो के गरीब खानदान की जो असली अनिशिकार जैसी जिंदगी जा लाए मुश्किलात तुक लाए सख्ती तुक रिसठ बर्दाश्त चोक पोलो। जैसी अवल अवल मस्जिदी जा मुआजिनो तोर तोरी जा क्रोम थे गऊ तोने नला नला रुस तालीम का हासिल थे वो जलो। गरीबी का महरूमी बावजूद रसी अजो इलम हासिल थो की तोने मुआशरी इसलाह थो की एक जज्बाक असिलो। सजार जारवी नजर इस्लामी शायरी एक आजादी मसावात मोहब्बत तोने इंसानियत तोने जुल्म के खिलाफ गजालिमों खिलाफ जो से हमेशा एक नुमाया आवाज एक उठाई थे कारण असोईते पाईजी बुझिंग। सजार जारवी जो बरतानवी इस्तेमार खिलाफ सख्त मुखालिफ असलो तोने रिसने नजमी का तहरीर उजी ऋषि कचट थे गऊ अनि आजादी शूरी बेदार पैदा थे के कार। सजार जारवी ऋषि मशहूर नजम बागी अनि हन की जैसे बेपनाह शोहरत लजी गौ रस यानी बागी नज्म रिट अनि दान मेट रुसे जुलुम नाइंसाफी जवरी खिलाफ अकीनी बेखुफ आवास बुलंद थे गऊ तो नरेसी शायरी नौजवान उकार एक हौसलाक बेदारी और पैगाम दे भजन। सजार जारवी काजी नजरुल इस्लाम सिर्फ शायरी एक ना सिलो बल्कि एक अजीम मौसिकार एक गर्व असिलो। रुस हजारों यानी कि गाय कार्यो तखलीक थे गऊ जैसे गाय मोहब्बती रूहानियत कौमी यकजहती तो ने इंसान दोस्ती जज्बात या भरपूर हन। रुस हिंदू मुस्लिम इतिहाद और फरोक दो की कार गबाड़ो क्रम थे गालो और तो ने जैसे लाए बड़े बेशुमार शायरी तुक गा गए तुक लिखे गालो। रसे रजनी असली के इंसानियत जो बड़ो कनुगा मजहब एक अनि दुनिया ते नुश तो इंसानियत एक बराबरी हक एक हन। अनि सिकार अनि तहरीरियो जरियच अनि कटट्ठाओ जरियच मुआशरेज कनिगा बुराई एक मजहबी इंतहा पसंदी एक तो ने नाइंसाफी के खिलाफ रुस आवाज उठाई थे वो जाऊं। अनि सिवाजिया रसे कई बार मुश्किल तो गकेदो बंद होगा सामना थोक पोलो लेकिन तुसे कभी हक गा सच्चाई भोल भाला कम न थे गऊ रो हार ने बोई गऊ अनि जिद्दजात अशगा रसई अशगा रो चोको मोहन अनि जिद्दजात इस नला जुलम गजालिमो खिलाफ तुने सच्चाई हकुश नला रो अशगा चोको बोहन। तो सजार जारवी मुश्किल युग शरात आनी बेसु कवाली कुंडे बोन शोहन मुख्तार जाहिद।